0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा,
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से

प्रति आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड काम इथनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विथ रेनबो फंडे। रेनबो फंडे।

0: प्रशांत नाईक, चंद्रशेखर भाटवडेकर, मंगेश घरत, किरण देवराम म्हात्रे, टेवराम म्हात्रे, त्यानंतर उज्ज्वला कर्वे, श्रेय मिलेश, गजानन राऊत ह्या मंडळींनी मेसेज केलाय. विजय देवारे, सुनील आणि स्वप्नाली जोशी, चंद्रशेखर मुळेकर, कमलिनी महाजिनी. अजूनही काही श्रोते आहेत, त्यांच्याबद्दल सांगेन, पण काही क्षणातच आता आपण राष्ट्रकुल स्पर्धेचे हायलाईट्स ऐकणार आहोत, डेली अपडेट्स, त्याकडे जाणार आहोत दिल्ली केंद्राकडे.
1: The Commonwealth Games.
2: नमस्कार. खेल सिर्फ पसीने और पदकों का हिसाब नहीं है, खेल कहानी है उस अजेय इच्छा शक्ति की जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है. ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026, जहां खिलाड़ी पगडंडियों से निकलकर इतिहास रचने पहुंचे हैं, जहां हर एक सेकेंड, हर एक छलांग और हर एक पंच के पीछे बरसों का त्याग और अनगिनत उम्मीदें जुड़ी हैं. ग्लासगो के एरेना में जब दुनिया भर के 74 देशों के बेहतरीन खिलाड़ी उतरे हैं, तो प्रतिस्पर्धा सिर्फ प्रतिद्वंदी से नहीं बल्कि खुद के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भी होती है. यहाँ गिरना हार नहीं बल्कि उठकर दोगुनी ताकत से पलटवार करने की सीख है.
3: ग्लासगो की 18 डिग्री सेल्सियस की हड्डियों को सिहरा देने वाली ठंड और इस सर्द मौसम के बीच भी राष्ट्रमंडल खेलों के मैदान पर खिलाड़ियों का पसीना लगातार बह रहा है. इस महासंग्राम में दुनिया भर के खिलाड़ी अपने हुनर और संयम के दम पर बस एक ही लक्ष्य के लिए जी जान लगा रहे हैं, देश के लिए एक अदद मेडल. पदक के लिए मचे इस रोमांचक घमासान के बीच खेलों के चौथे दिन आखिरकार भारत का स्वर्णिम खाता खुल ही गया.
4: Indeed, India's golden journey in the Glasgow Games began with the unflappable Mirabai Chanu comfortably defending her 48 kg title in weightlifting.
3: आइए जानते हैं 22वें Commonwealth Games में चौथे दिन क्या-क्या हुआ. Commonwealth Games 2026 में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर खेल प्रेमी को इंतजार था. भारत के स्वर्णिम अभियान का आगाज उस नाम ने किया जिसने हर बड़े मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया. ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय भारोत्तोलन की सबसे बड़ी स्टार साई खोम मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
5: हमारी नेशनल एंथम जो है वो जब गाते हैं, जब सुनते हैं तो अपना आप आंसू निकलते हैं, खुशी के ही आंसू है. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए.
3: जैसे ही पोडियम पर तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया, वो क्षण हर भारतीय के लिए गौरव से भर उठने वाला बन गया.
4: The legendary Mirabai began her title defense run with a failed attempt at lifting 82 kgs in the snatch before succeeding in lifting the weight. She then went on to set a Commonwealth Games record with a lift of 85 kilos, 10 kgs ahead of her nearest rival's best lift. The rift widened in the clean and jerk section as the Tokyo Olympic silver medalist succeeded in lifting 105 kilos in her second attempt to complete a total lift of 190 kgs and rise to the top of the podium as the tricolor fluttered proudly. She finished 22 kgs. Ahead of the silver medalist Ruth Nyong of Nigeria.
3: इस स्वर्णिम जीत के साथ साई खोम मीराबाई चानू के प्रदर्शन पर सीनियर खेल पत्रकार राकेश थपलियाल कहते हैं,
6: बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है मीराबाई चानू का और ये लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स है जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. उसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी, तब 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. फिर 2022 में 49 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और अब 2026 में 48 किलोग्राम वर्ग में मेडल जीता है. मीराबाई चानू की जो कंसिस्टेंसी है वो एक बड़ी गजब की रही है कि लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना, ये गोल्ड मेडल की शुरुआत यहाँ पर हो गई है.
3: मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में मेडल के लिए अपनी प्रबल दावेदारी का परिचय भी दे दिया.
5: ये गेम्स में हम इतना एफर्ट नहीं लगाने वाली थी, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो फेल हुआ था, दोनों ने सोचा था कि हम दो लिफ्ट ही करेंगे, उनके आगे एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए हमको फोकस करने थे.
2: सच कहा जाए तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन वेट लिफ्टर्स के नाम रहा. मीराबाई चानू ने गोल्ड हासिल किया, लेकिन उससे पहले पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में मणिपुर के ऋषिकांता सिंह ने अपनी चुनौती रखी. मणिपुर के स्वेटलिफ्टर ने निराश नहीं किया, कुल 271 किलो वजन उठाने का राष्ट्रीय

0: रिकॉर्ड रखने वाले ऋषि कांता ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला सिल्वर मेडल दिलाया।
1: रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ऋषि कांता सिंह चलंबा।
2: ऋषि कांता सिंह ऑफ इंडिया गेट्स द सिल्वर कॉमनवेल्थ चैंपियन फ्रॉम लास्ट ईयर, गेट्स द सिल्वर हियर।
0: ऋषि कांता ने तीसरा प्रयास 121 किलो का सफलतापूर्वक हासिल किया और इसके साथ ही स्नैच में अपनी वेट कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि मलेशिया के अनिक कसदार ने भी अपने तीसरे प्रयास में इतना ही वजन उठाया। फिर बारी आई क्लीन एंड जर्क की। उन्होंने तीसरे प्रयास में 151 किलो भार उठाने की कोशिश की लेकिन बाजुओं ने फिर साथ नहीं दिया। अनिक अपने तीसरे प्रयास में 152 किलो वजन उठाकर न सिर्फ ऋषि कांता से काफी आगे निकल गए बल्कि गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवाने के साथ साथ ओवरऑल 273 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाने में सफल रहे। ऋषि कांता,
3: पहले मैं बहुत खुशी हूँ सभी मिलके, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड इंडियन स्पोर्ट मिनिस्टर एंड इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, सभी ना हम स्पोर्ट को सपोर्ट करके आज इधर मेडल लेके आने के लिए बहुत सपोर्ट किया था।
0: भारत को दिन का दूसरा सिल्वर मेडल भी वेटलिफ्टिंग से मिला। ऋषि कांता के बाद मुथुपांडी राजा ने मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। राजा और मलेशिया के मोहम्मद अजनिल बिन बिदिन के बीच तगड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार मलेशिया के बिदिन 299 किलो के कुल वजन के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीत गए। राजा को 286 किलो के कुल वजन के साथ सिल्वर मेडल मिला। भारतीय मुक्केबाजों का दम कल दुनिया ने देखा। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारत की प्रीति का मालवी की मुक्केबाज देवरा मेटंजे के पास कोई जवाब ही नहीं था। पावरफुल प्रीति ने शुरुआत से ही विरोधी पर ताबड़तोड़ पंच चढ़े। इस तरह भारतीय मुक्केबाज आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी।
4: रियली नाइस टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम बिकॉज इट डज मैटर फ्रॉम व्हिच कंट्री यू बिलोंग, सो रियली नाइस।
0: पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में भी जादूमणि सिंह के मुक्कों का उनके प्रतिद्वंदी सुमामा रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। सटीक आक्रमण और शानदार बचाव के जरिए जादूमणि ने पाकिस्तानी मुक्केबाज को टिकने का मौका ही नहीं दिया। राउंड ऑफ 16 में जीत के साथ जादूमणि भी जादुई प्रदर्शन करते हुए अंतिम 8 में पहुंच गए। पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आदित्य प्रताप यादव को राउंड ऑफ 16 के नजदीकी मुकाबले में उगांडा के बट्टे नुहू से 3-2 से हार मिली।
5: और अब बात लॉन बॉल्स की। भारत की रूपा रानी और पिंकी को दिन में खेले गए महिला पेयर्स के पहले मुकाबले में पहली हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप बी के रोमांचक मुकाबले में नामीबिया की जोड़ी ने भारतीय खिलाड़ियों को टाई ब्रेकर में 3-0 से मात दे दी। इस हार के बावजूद भारत की जोड़ी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई थी लेकिन देर रात हुए दूसरे आखिरी ग्रुप मुकाबले में विमेन्स पेयर्स के सेक्शनल मुकाबले में पिंकी और रूपा की जोड़ी एक सेट से आगे होने के बावजूद टाई ब्रेक में इंग्लैंड से हार कर बाहर हो गई। वहीं पुरुषों के लॉन बॉल्स के मुकाबले में भारत के पुतुल सोनोवाल को रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष एकल लॉन बॉल स्पर्धा के सेक्शनल मुकाबले में माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही पुतुल का आगे बढ़ने का सपना खत्म हो गया।
6: In swimming, the men's 4x200 relay team made it to the final before coming 6th in the event. Meanwhile, Tapan Mohanty finished 15th out of 18 finalists in the men's all-round final in gymnastics with a combined score of 70.100.
0: ग्लासगो में जिन खेलों में भारत की इस बार पदक की सबसे ज्यादा दावेदारी है उसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी शामिल हैं। आज इसकी शुरुआत होने वाली है। एथलेटिक्स में सबसे पहले ट्रैक पर गुरिंदर वीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राउंड 1 की हीट 4 में उतरेंगे। उन्होंने हाल में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वे भारत के पहले ऐसे स्प्रिंटर हैं जिन्होंने 10.10 सेकंड का समय का बैरियर तोड़ा है। आज ही लॉन्ग जंप में भारत के पदक की बड़ी उम्मीद मुरली शिवशंकर क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में और लोकेश सत्यनाथन क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में फील्ड पर होंगे। शिवशंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 8.08 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता था। 110 मीटर हडल रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले तेजस सिरसे भी खेलों के पांचवें दिन मेडल की बड़ी उम्मीद होंगे। अगर वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो पदक के लिए दोबारा देर रात ट्रैक पर उतरेंगे। मेंस हाई जंप में भी आज मेडल मुकाबला होगा। भारत की तरफ से सर्वेश अनिल कुशारे।

0: आदर्श राम ज्योतिशंकर और तेजस्वी शंकर की चुनौती होगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कुशारे देश के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। उन्होंने इसी महीने मोनाको डायमंड लीग में 2.26 मीटर ऊंची छलांग लगाकर ऐतिहासिक तीसरा स्थान हासिल किया था। बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तेजस्वी शंकर भी इस साल पदक का रंग बदलने की उम्मीद कर रहे होंगे। ज्योतिशंकर की चुनौती को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पैरा एथलेटिक्स में भारत की तगड़ी चुनौती रहने वाली है। विमेंस शॉटपुट F57 कैटेगरी में शिल्पा KS और शर्मिला पदक के लिए अपना सारा हुनर और ताकत झोंक देंगी। पुरुषों की T38 कैटेगरी की 100 मीटर रेस में राकेश भाई भट्ट और श्रेयांस त्रिवेदी पदक जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे। साल 2026 भी उनके लिए खास रहा है। इस साल उन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में गोल्ड मेडल जीता।
1: Let's now take a look at what will be a busy day for Indian boxers today at the Commonwealth Games. In the 60 kg category, Sachin Sivach will take on England's Will Hewitt. The 2016 World Youth Champion and 2026 Asian Championship silver medalist uses his 5'10" frame for a sharp back foot counter punching style and is riding high on form and confidence, coming off a solid 4-1 win over former CWG medalist Canada's Al Ahmadiyya. His long reach will be key to keeping the aggressive home favorite Hewitt at bay. Meanwhile, Ankush Panghal will take on Zalan Jan of Antigua in the men's 80 kg category. The reigning 2026 national champion in the light heavyweight division is a heavy-handed front foot pressure fighter with strong inside footwork. He will be making his games debut and Ankush will look to establish control early with body shots against Zalan Jan. Meanwhile, in the women's section, Sakshi Chaudhary will be taking on Lethabo Modukanele from Botswana in the 51 kg weight division. Sakshi comes into the event as a strong medal contender. Her high volume and relentless pace makes her a strong favorite against Botswana's experienced Modukanele if she gets into a rhythm from round one. Back in the men's segment, Sumit Kundu will also be in action against John McConnell of Northern Ireland. Sumit got a bye in the round of 32 and against Northern Ireland's John McConnell, he will be facing a tough challenge. He relies on his high tempo inside game and power combinations, and this will be a matchup to look out for.
2: आज का दिन भारतीय तैराकी और पैरा तैराकी दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूल में भारत के कई खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे और देश को उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद भी होगी। अनुभवी तैराक सजन प्रकाश एक बार फिर पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उतरेंगे। पहले हीट में उनका लक्ष्य फाइनल का टिकट हासिल करना होगा, जबकि क्वालिफाई करने पर देर रात होने वाले फाइनल में उनकी नज़र पदक पर रहेगी। वहीं युवा तैराक आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के फास्टेस्ट हीट में उतरेंगे, जहां लंबी दूरी की इस चुनौतीपूर्ण रेस में उनका धैर्य और गति दोनों की परीक्षा होगी। इसके साथ ही पैरा स्विमिंग में भी भारत की उम्मीदें स्वातिक पाटिल पर टिकी होंगी। स्वातिक पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक SB9 वर्ग की हीट में हिस्सा लेंगे और शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो क्वालिफाई करने में सफल रहते हैं तो भारत के लिए पदक जीतने की चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर आज पूल में भारत के लिए हर रेस बेहद अहम होगी। सजन प्रकाश, आर्यन नेहरा और स्वातिक पाटिल के प्रदर्शन पर भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें रहेंगी। उम्मीद होगी कि ये खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाए बल्कि भारत के पदक अभियान को भी नई रफ्तार दे दें।
1: More medals in weightlifting will be on the cards today as the Indian lifters aim to continue the momentum. Gyaneshwari Devi will be making her debut in the Commonwealth Games and taking part in the 53 kg category. She won bronze at the Asian Championships and her personal best of 194 kilos makes her the top-ranked lifter in the Commonwealth. Meanwhile, Vindhyarani Devi, a silver medalist at Birmingham, will be looking to make it two podiums in two as she enters the stage in the 58 kg final. In the men's segment, Valluri Ajaya Babu will be the dark horse in the 79 kg category.
0: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में वुमेन वॉल्ट में भारत की प्रतिष्ठा सामंता की चुनौती होगी।
1: Now, let's take a look at the medals tally. Australia top with a grand total of 39 medals and England are a distant second right now. India meanwhile with 4 medals and 1 gold are now at the 8th position as the action heats up.
2: आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपके साथ वापस जुड़ेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की ताज़ा अपडेट के साथ इसी समय पर। तब तक हमारी पूरी टीम प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी, संपादक वन्ना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मैं कविता शर्मा आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार। आत्ताच आपण ऐकलत राष्ट्रकुल स्पर्धेचे हायलाइट्स आणि आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो वाहिनी 107.1 MHz आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपवर आपण भेटलोय। 7:45 होत आहेत। सादर करत आहोत अज्ञात मुंबई।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
4: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
1: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेट लिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 8:40 और 50 सेकंड हो चुके हैं और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़। सो कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। सो हैव ए नाइस डे। और दोस्तों, वीक का पहला वर्किंग डे यानी मंडे, और लोगों को अच्छा नहीं लगता है संडे के बाद काम पर जाना, लेकिन काम पर तो जाना ही पड़ता है और जाना भी चाहिए, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो चलिए, आप जहाँ भी हैं, मेट्रो में हैं, ट्रेन में हैं, कार में हैं, ऑटो रिक्शा में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, अपने मोबाइल के साथ मेरे साथ जुड़ जाएँ और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने होंगे। और रविन क्या करता है आप हमेशा से अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए, मुंबई के मौसम के साथ, मुंबई की बरसात के साथ हम भी रफी साहब की आवाज में थोड़ा थोड़ा भीग जाते हैं, क्योंकि मौसम है भीगा भीगा।

0: हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: हैं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी हाँ, मुंबई सिटी कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है और मैं हूँ आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजी रविन चौहान। दोस्तों, हम सभी हिंदी फिल्मों के कितने दीवाने हैं हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, और हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स यानी संवाद किस तरह से हमारे जहन पर, हमारे दिलो दिमाग पर असर करते हैं। लोगों की जुबान पर ऐसे छा जाते हैं जैसे कि उनकी मदर टंग हो। जैसे जो डर गया समझो मर गया, तेरा क्या होगा कालिया, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। दोस्तों, ये डायलॉग्स कितने हिट हैं, और ये डायलॉग जिस फिल्म के हैं वो मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 साल से ज़्यादा समय तक लगातार चली थी। आप समझ गए हैं मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, यानी शोले। और ये फिल्म ऐसी है कि इसका नाम लेते हैं तो दिल में शोले भड़कने लगते हैं। सुपर डुपर हिट फिल्म थी। आज इस हिंदी फिल्म के खलनायक द ग्रेट अमजद खान साहब का यानी गब्बर सिंह जी का, उनकी आज पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 1992 को सिर्फ बहुत दुख की बात है कि 51 साल की उम्र में उनका मुंबई में निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है तो हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। और चलिए व्हाट्सएप के जरिए एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। आपको बताना है व्हाट्सएप के जरिए कि अमजद खान साहब की आखिरी रिलीज हिंदी फिल्म कौन सी थी। तो चलिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और काम पर लग जाएं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, लता जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी हाँ, मुंबई सिटी सपने हम सभी देखते हैं, और शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो कहे कि मैंने कभी रात में सोते समय सपना नहीं देखा, या मेरे दिलो दिमाग में कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। क्योंकि एक स्कॉलर ने कहा है, द पीपल हु ड्रीम द मोस्ट दे डू द मोस्ट इन देयर लाइफ, यानी जिंदगी में कोई ना कोई सपना ड्रीम जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बहुत स्कॉलर, बहुत महान हस्ती हमारे देश में हुए जिन्होंने कहा था, सपना वो नहीं होता जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। यानी जिस सपने की वजह से आपकी नींद उड़ जाए, आपकी नींद खराब होने लगे कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो मेरा सपना पूरा होना चाहिए, मैं अपने सपने को किसी भी हालत में टूटने नहीं दूंगा। दोस्तों, एक बार मनोज वाजपेयी ने कहा था कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, थिएटर कर रहा था, तो मैं हमेशा खुद से कहता था, चाहे कुछ भी हो जिंदगी में, लेकिन मैं अपना सपना कभी टूटने नहीं दूंगा। कमाल की विल पावर है, कमाल का भरोसा है खुद पर। तो ये जो शब्द हैं, ये जो कोट हैं कि जो सपना आपको रात को सोने नहीं देता, ये अल्फाज हैं भारत की एक बहुत बड़ी हस्ती APJ अब्दुल कलाम साहब के। भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में उनका निधन हो गया था। तो ऐसी महान हस्ती को दोस्तों हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। वो भारत भूमि में पैदा हुए, पूरी भारत भूमि, हर भारतवासी उनका ऋणी है और हमेशा ऋणी रहेगा। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, और आज हमारे साथ हमारे एक नए साथी साकेत शर्मा भी स्टूडियो में हैं, और आने वाले समय में आप ऑन एयर उनकी आवाज़ सुनने वाले हैं। वो जयपुर से आए हैं और स्टूडियो को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारा रेनबो का स्टूडियो कैसा है। तो बहुत जल्दी आपको ऑन एयर उनकी आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए अगला गीत साकेत शर्मा की पसंद का मैं आपको सुना रहा हूँ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:35 और 6 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, और मुंबई का मिजाज कैसा है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि छमाछम बरसात अपना रंग दिखा रही है, और रफ़ी साहब के प्यारे प्यारे गाने मैं आपको सुनवा रहा हूँ। लेकिन अगला गीत मुकेश साहब की आवाज़ में सुनवाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है, और जिसकी भी मतलब जिसकी भी साथी, जिसकी भी दोस्त, जिसकी भी हम सफ़र नाराज़ है, तो आप ये गाना उन्हें डेडिकेट कर सकते हैं और सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। तो चलिए, आप सबके साथी के लिए, यानी मोहब्बत के साथी के लिए, दिलबर के लिए, बहुत ही खूबसूरत गीत ओ महबूबा, गौर से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत था दिल के पास। और दिल के पास जो होता है वो इंसान हमेशा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है और इंसान उसके करीब रहना चाहता है। एनीवे, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो और कार्यक्रम मस्त मुंबई और मुंबई का भीगा भीगा मिजाज, और मैं रवीन आपके साथ। और जैसा कि जानते हैं कि रफ़ी साहब के गीतों के लिए आप हमेशा मुझे दाद देते हैं, तो थैंक्स ए लॉट। हमारे बहुत सारे लिसनर्स व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, ढेर सारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एनीवे, तो दोस्तों हिंदी सिनेमा की आज एक और बहुत ही खूबसूरत हसीन शानदार जो बहुत सफल हैं, जिनका जलवा पर्दे पर छाया रहता है, उनका आज हैप्पी हैप्पी बर्थडे है। और ये नई पीढ़ी की एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है कीर्ति सेनन। कितना खूबसूरत नाम है। डियर कीर्ति, आपके तो नाम में ही कीर्ति शब्द है, यानी आपको तो कीर्ति मिलनी ही थी। एनीवे, इनका जन्म हुआ 27 जुलाई 1990 को दिल्ली में, और इन्होंने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर उस पढ़ाई को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, और उसके बाद एक फैशन मॉडल बन गई और एक मॉडल के तौर पर करियर को आगे बढ़ाया। और 2014 में इनकी पहली हिंदी फिल्म आई हीरोपंथी, टाइगर श्रॉफ के साथ। फिल्म सुपरहिट हुई और इनकी इनका करियर आगे चल पड़ा। 2021 में एक और फिल्म आई, कमाल की फिल्म थी मिमी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इस फिल्म के लिए इन्हें भारत सरकार ने शानदार एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। दोस्तों, करियर में इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में नेशनल अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और जब मैं कुछ ऐसा देखता हूँ कि किसी को ऐसा अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे अंदर भी थोड़ी सी एक भूख जागती है कि मुझे भी कोई अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों हमारे लिसनर्स का ढेर सारा प्यार, मेरे दोस्तों का, मेरे यारों का ढेर सारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, और रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ें आजा के इंतज़ार में।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:53 हो चुके हैं और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ऑल टाइम ग्रेट अमजद खान साहब यानी गब्बर सिंह की आखिरी रिलीज हिंदी फिल्म कौन सी थी। तो आपके बहुत सारे जवाब आए हैं, लेकिन प्रमोद साहब ने, प्रमोद चिंचोलकर साहब ने तो हद ही कर दी। आपने लिखा है कि अमजद खान की आखिरी मूवी शोले थी। अरे भाई, किस दुनिया में रहते हो आप, थोड़ा तो गूगल कर लेते, गूगल बाबा बैठे हैं ना हेल्प करने के लिए। एनीवे, चलिए, राकेश माथुर साहब ने पूना से सही जवाब दिया, प्रणव शिंदे ने भी सही जवाब दिया और भालचंद्र फाटक जी ने सही जवाब दिया, पंकज माहौड़ ने भी सही जवाब दिया और शुभ लक्ष्मी मस्तकार ने भी सही जवाब दिया, इंदौर से संयोगिता चौहान ने सही जवाब दिया, विजेंद्र घाटोल अकोला ने भी सही जवाब दिया और महेश भाटकर सेंटाक्रूज से, इन्होंने भी सही जवाब दिया, तनुजा शर्मा अंधेरी से, उन्होंने भी सही जवाब दिया और सही जवाब देने के बाद उसे डिलीट कर दिया। क्यों तनुजा जी, आपको अपने जवाब पर भरोसा नहीं था, आपका जवाब सही है। गब्बर सिंह जी की यानी अमजद खान साहब की आखिरी रिलीज फिल्म थी आतंक, जो 1996 में आई थी। और प्रमोद भाई, शोले तो उनकी दूसरी तीसरी फिल्म थी जिससे वो सुपरस्टार बने थे। एनीवे, चलते चलते ऑल टाइम ग्रेट गब्बर सिंह जी को यानी अमजद खान साहब को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। और ये गीत मैं सभी को डेडिकेट करता हूँ, उन सभी लोगों को जिनके दिल में ढेर सारी मोहब्बत है, जो मोहब्बत को महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को पा लिया है, क्योंकि हमने तो आपको पा लिया है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 10:01 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। ये समय है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट

0: के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए जाएंगे। कार्यबल में पूर्व मुखिया ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनिता कारवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी इस कार्यबल का हिस्सा रहेंगे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोगों के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2018 और 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अंत में आईएमडी ने आज कोंकण के जिलों में और मध्य महाराष्ट्र के घाट वाले इलाकों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा के जिलों में भी कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने, हल्की से मध्यम बारिश और 40-50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। विदर्भ के लिए आईएमडी ने 28 और 29 जुलाई के बीच कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान लगाया है। तो आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
0: वेलकम बैक मुंबई। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, गीत संगीत के दीवानों, आप सभी का एक बार फिर से मंडे की इस ब्राइट मॉर्निंग यानी 27 जुलाई में स्वागत है। मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान, सो लव यू ऑल। और पहला गीत आशा और आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत की कुछ लाइंस बहुत ही अच्छी हैं, कहीं ना कहीं दिल को छू जाती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके दिल को भी ज़रूर ज़रूर टच करेंगी। एनीवे, समझने वाले समझ गए।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

ये मुलाकात एक बहाना है, और ऐसी कितनी मुलाकातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, और कभी कभी कोई मुलाकात दोस्तों खास बन जाती है, और ऐसा एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी का भी ज़रूर होगा। एनीवे, 10:20 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजी रविंद्र चौहान। और आज हमारा टाइटल है इस स्लॉट में है प्रीत जहां की रीत सदा। दोस्तों मतलब साफ है कि भारत ने पूरी दुनिया को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। आज इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, आज इस पर बात करना बनता है, क्योंकि आज एक खास दिन है और इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल लव इज काइंड डे। जी हाँ, अब हिंदी में आप इसका ट्रांसलेशन अपने आप कर लीजिए। जी हाँ, नेशनल लव इज काइंड डे, यानी ये दिन 27 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आप अपने देश प्रेम के बारे में, अपने देश के लिए आपके दिल में क्या भावनाएं हैं, क्या जज्बात हैं, आप अपने मुल्क से, भारत से कैसे मोहब्बत करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें संदेश भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपके संदेशों का बहुत ही बेकरारी के साथ रविन को इंतज़ार रहेगा। तो चलिए किशोरदा की आवाज़ चला जाता हूँ, चलते हैं हम भी किशोरदा के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आज है नेशनल लव इज काइंड डे और इस पर हम बात कर रहे हैं। और साल 2026 का थीम है कि जिन लोगों ने अपनी निजी जिंदगी में घरेलू हिंसा का सामना किया और उस तकलीफ को उठाया, यानी घरेलू हिंसा आप समझ सकते हैं क्या होती है, खराब व्यवहार घर के किसी एक सदस्य द्वारा किसी दूसरे सदस्य के साथ करना, लेकिन वो उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़े, उन्होंने उसका खुलकर विरोध किया, सामना किया और उससे बाहर निकले और अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से आज़ादी के साथ जीना सीखा, आत्मसम्मान की भाषा को समझा और उसके साथ खुलकर जिए। तो आज का दिन दोस्तों ऐसे सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया। FM रेनबो के ज़रिए हम आज उन्हें सलाम करते हैं, कोटि-कोटि नमन करते हैं। तो सुनते रहिए FM रेनबो। अगला गीत किशोरदा की आवाज़।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, 10:39 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम नमस्ते भारत, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, मेरे बच्चे, मेरे सोना, मेरे बाबू, तुझे क्या चाहिए है? जी हाँ, ऐसे हमारे इरादे होने चाहिए। और मेरी शायरी सुन के साकेत स्टूडियो में हंस रहे हैं। एनीवे, चलिए, आप बड़े गमगीन बैठे थे, आपके चेहरे पर हंसी तो आई। तो बात कर रहे थे है प्रीत जहां की रीत सदा। तो दोस्तों, हमारे देश में नदियों के नाम के साथ भी माँ लगाया जाता है, गंगा माँ, यमुना माँ, कावेरी माँ, कितने सारे पेड़ों की हम पूजा करते हैं। हमारे देश में जल के साधनों का कितना सम्मान किया गया है। वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा सफाई की बात करते हैं कि हमें अपने देश को, अपने शहर को, अपनी सोसाइटी को, अपनी गली को और अपनी जिंदगी को भी साफ रखना चाहिए। और इससे पता चलता है कि हमें कुदरत से प्यार करना चाहिए। यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स हमें ये सिखा रहा है कि हम इस धरती पर शांति और प्रेम के साथ जीना सीखें, और इसके लिए हमें हर रिश्ते की मर्यादा को समझना होगा, क्योंकि प्रेम की शुरुआत घर से होगी, फैमिली से होगी, और तभी हमारा प्रेम हमारे देश तक पहुँच सकता है। तो चलिए, ऐ जिंदगी हमें गले लगा ले, मोहब्बत कर ले हमसे। सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के लिए एक जगह ऐसी है जो बहुत खास होती है, वो होता है घर, जहाँ इंसान खुद को हर तरह से सुरक्षित महसूस करता है। आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, काम से जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों घूम फिर कर आपको वापस अपने घर ही आना होता है, क्योंकि घर का मतलब होता है सुकून, शांति, चैन, आराम, और एक ऐसी फीलिंग आती है

घर एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ मेरा अपना है, मुझसे ताल्लुक रखता है, मेरे अंदर की कुछ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मेरे लिए है, जहां मैं अपने ढंग से जी सकता हूं, जहां मेरी अपनी जिंदगी है, जहां किसी की दखल अंदाजी नहीं है, उसे कहते हैं घर। यानी वहां मैं हर तरह से खुद के साथ हूं, पूरी तरह से सुरक्षित हूं। लेकिन अगर, जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा अगर है, अगर वहां पर खुद के साथ मारपीट होने का डर हो, बेइज्जत होने का डर हो, गाली गलौज सुनने का डर हो, तो फिर घर का मतलब

खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन घर नहीं छोड़ा, बल्कि घर में ही रहकर आत्मसम्मान के साथ जीने का, शांति के साथ जीने का हक हासिल किया। तो मुंबई, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मैं ऐसे सभी लोगों को FM रेनबो के ज़रिए सलाम करता हूँ। लव यू ऑल। अगला गीत लता जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत, और इसी के साथ आपका जिंदा दिल दोस्त रविंद्र चौहान विदा लेता है। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, अब आप सुनेंगे इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुचारों पर एक उच्च स्तरीय कार्य बल के गठन की घोषणा की है, जिसके नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। कार्यबल में पूर्व खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एक सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक की कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी कार्यबल का हिस्सा हैं। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया। 31 वर्षीय इस भारोत्तोलक ने स्नेचो में 45 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2018 और 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक हासिल किया है। IMD ने आज कोंकण के जिलों और मध्य महाराष्ट्र के घाट वाले इलाकों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी

0: बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा के जिलों में भी कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने, हल्की से मध्यम बारिश और 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। विदर्भ के लिए आईएमडी ने 28 से 29 जुलाई के बीच कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ समाचार समाप्त।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल 107.1 107.1 एफएम पर। साथ ही साथ सुबह की शुरुआत ब्रेक फ्री से करेंगे, उसके बाद 12 बजे होगा म्यूजिक कैफे और 1 बजे हिट एंड हॉट समाचारों के उस पार। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनजा। तो आज के दिन की ब्रेक फ्री शुरुआत करते हैं, क्योंकि वैसे भी समस्या तो ब्रेक फ्री चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मुस्कुराहट के लिए। तो इसीलिए मैं हूँ आपके साथ 8657 6 6 1 0 7 1

नजरे बिल्कुल नहीं चुराना, 8657 66 1 6 0 7 8 6 5 7 6 6 1 0 7 1। ये था नजरें मिलाना, नजरें चुराना, जाने तू या जाने ना से। और यही साथ बेनी दयाल और एआर रहमान का म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो ब्रेक फ्री में। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनाजा। और ब्रेक फ्री का चक्कर यही है कि आज सोमवार तो मंडे शुभारंभ करना तो हम चाहते हैं, लेकिन मंडे ब्लूज से भी तो ब्रेक फ्री होना है ना। तो थोड़ी सी खुशी और अपना दुख दर्द बांटने के लिए एक साथ बिल्कुल हाजिर है।

फिल्म का नाम ब्लू, और मंडी ब्लूज को बाय बाय बोल ही रहे हैं ब्रेक फ्री में, क्योंकि ये जो घेरे हैं जिनमें हम फंसे हैं उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, किसी तरह मुस्कुराने की कोई वजह खींच के कहीं से लेके आनी है। रकी वालम और सुखविंदर सिंह यार रहमान का म्यूजिक एक बार फिर 107.1 म्यूजिकली योर्स।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जोर का झटका लगा गया। जोर का झटका जोर से ही लगता है। नहीं,
1: फिल्म का नाम है वैसे एक्शन रीप्ले। दलेर मेहंदी, ऋचा शर्मा और मास्टर सलीम है साथ। इरशाद कामिल ने लिखा है। प्रीतम का म्यूजिक सुन रहे हो अपनी आरजे मृणमयी मनोजा के साथ। और कहीं ना कहीं ऐसे झटके लगते हैं, जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है, और फिर उसके बाद जो गिल्ट होता है दुश्मनों से लड़ना ना बहुत आसान होता है। कठिन लेवल तब आता है वीडियो गेम ऑफ लाइफ में, यानी जिंदगी के खेल में सब कुछ ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब अपनों से लड़ना पड़ता है या अपनों को कुछ समझाना पड़ता है। थोड़ा सा जो मन मुटाव हो जाता है, कभी दिल दुख जाता है, कभी हम किसी को हर्ट कर जाते हैं ना चाहते हुए भी, और ऐसा हो जाए कि आप कुछ समझाना चाहो और वो बूझो तो जाने ना खेले हैं, नहीं होता ना? यही तो संभव है क्या कि कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए जिंदगी में? ना, बिल्कुल नहीं। खास तौर पे जब हमारे ऊपर कोई किसी चीज़ का गिल्ट का गुस्सा या निराशा निकालता है, फ्रस्ट्रेशन कि वो काम नहीं कर पाए और हम पे निकाल दिया, लेकिन वहीं कभी कभी हम खुद वही कर जाते हैं और उसके बाद पश्चाताप ना धुला वाला जो हालात होते हैं ना, वही उसी में फंस जाते हैं। तो ये चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे, कैसे ब्रेक फ्री करेंगे, क्या कहते हो? 865-66-1071। घेरे एक्शन हीरो से।

तो घेरे में हो क्या इस वक्त, दर्द ही दवा है, हुई कहीं सुबह है। भाई फिलहाल तो हमारे यहाँ ही सुबह हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एकदम टूट के हार जाते हो तो ये भी कितना एक अच्छा सा नजरिया है ना कि कहीं तो सुबह हुई है, कहीं तो स्याह रात की सहर होगी, है ना। तो वो वाली बात है। अब गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, दिल हो उदास और उसमें मंडे में काम करना पड़े तो समझ सकती हूँ मैं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल पेशेंस तो कहीं भाग के जा ही चुका है, धैर्य तो है ही नहीं, ना हम में है ना बड़ों में है, सबका वही हाल है। 100 काम होते हैं और ऐसे में अगर आप सामने खड़े हो, एक्शन रीप्ले अभी पति पत्नी का जो है तूतू में चल ही रहा था कि जोर का झटका कभी कभी लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो, आपके रूममेट्स भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, परिवार के कोई भी सदस्य हो सकते हैं। जब हम साथ रहते हैं ना तो एक दूसरे के व्यक्तित्व के साथ जीना पड़ता है। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, जैसे हम सब की माएँ, और हम वहाँ पे नालायक एकदम बैठे रह जाते हैं। छोटी से छोटी बात लेकिन कहीं ना कहीं दिल पे असर कर जाती है। अब ये सोचो, जैसे फ़ोन का चार्जर दे देना, इतनी छोटी सी बात हो, आपके बगल में हो और कोई आपसे मांग ले कि आप पकड़वा दो, और वही एक सेकंड की देरी और आपकी माँ के घुटनों में जितना भी दर्द हो वो पूरा उल्टा घूम के जाकर ले ही लेंगी, बोलेंगी कुछ नहीं और फिर गिल्ट में हम मरेंगे। तो इतना बलिदान पता नहीं क्यों करते हैं। बच्चे के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो थोड़ा और चार्ज हो जाता, हम लोग तो जाग रहे हैं, हम बाद में दे देंगे, आप ही का फोन है, 50% से 80% हो जाता तो कुछ भला ही हो जाता, पर नहीं। और अगर आप गलती से बोल दें फिर तो जो खैरियत कैफियत आपको छोड़ के भाग के जाती है, जो उनका दिल उदास होता है, फिर आप और ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि अरे करने कुछ जाते हो कुछ और जाता है। तो बस ऐसे ही कभी कभी अपने जो सबसे दिल के करीब होते हैं ना उनसे पूछ लिया करो कि क्या हाल है। जैसे कि मैं तो पूछती हूँ, कैसे हो,

0: छछोरे,
1: नहीं नहीं आप नहीं है, फिल्म का नाम है छछोरे। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे, अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स है, प्रीतम का म्यूजिक है और ये है 107.1 FM रेनबो मुंबई।
2: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: eKYC,
3: NEFT, RTGS,
2: IMPS,
3: कॉस्मॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
2: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दिल का क्या है, पतंग की तरह उड़ता ही रहता है। काइट्स का गाना वैसे सुन रहे थे के की आवाज में। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। ब्रेक फ्री करना चाहते हैं हर तरह के कलेश से, दिल के दर्द से, दर्द को दवा बना रहे हैं और चेहरे पे मतलब मुस्कान चिपका रहे हैं। दिल पे पत्थर रख के मेकअप कर रहे, वही वाला वही हालात लेकर हर कोई अपनी जिंदगी से जूझ रहा होता है। मैं वैसे आपसे बात कर रही थी कि जब कभी छोटी छोटी बातें होती हैं और गुस्सा कोई हो जाता है तो क्या हालात होते हैं। सुबलक्ष्मी हमें लिखती हैं, जब मेरे ऊपर कोई गुस्सा करता है उस समय मैं चुपचाप बैठती हूँ और जब वो शांत हो जाता है तब मैं मेरी राय समझाती हूँ। लेकिन कुछ लोग ना पता है कभी शांत होते नहीं है, और ख़ास तौर पर जब

कैफे हो रॉकस्टार। रॉकस्टार फिल्म का गाना है, मोहित चौहान की आवाज, एआर रहमान का म्यूजिक, और 11:58 है, यानी कि सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं 12 बजे तक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनोजा, और हमें ये मैसेज आया हुआ है, गुड मॉर्निंग मृण्मयी जी, कार्यक्रम ब्रेक फ्री, हम बहुत सुंदर गाने प्ले कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, गुस्से की बात हो रही है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, अभी थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमेशा खुश रहता हूँ। जो गुस्सा करते वो तो खुश ही रहते, नहीं मतलब गुस्सा नियंत्रण में लाना वो भी बहुत ही कठिन

रिएक्शन होता है, बात तो एकदम सही है। कभी कभी हंसी की वजह जब हम किसी को ज्यादा बना लेते हैं तो हम खुद भी दुखी हो जाते हैं, और वहीं जब सामने वाले का जो मूड है वो हमारे पूरे मंडे मोटिवेशन का मंडे ब्लूज बना देता है तो भी दुखी हो जाते हैं, है ना। तो वही प्रेरणा वाली बात है, उत्साह और आशा ऐसे फ्री में मिलती तो नहीं है बाजार में, कहीं ना कहीं से लेनी ही पड़ती है। ऊर्जा खरीदी नहीं जाती, ऊर्जा जो है एक तरह से रूपांतरित ही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है ना। तो बस अलग अलग तरह से बदलते रहो, मुस्कुराते रहो और खिलखिलाते रहो। ये सब तो जिंदगी का चक्र है जो कि चलता ही रहेगा, और हम वैसे भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस प्रयास ही कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये था ब्रेक फ्री, आप सभी के मैसेजेस में पढ़ रही हूँ। अब होगा म्यूजिक कैफे 12 से लेकर 1 बजे तक, और ठीक 1 बजे समाचारों के इस पार हिट एंड हॉट होगा। 11 से लेकर 2 बजे तक मैं हूँ आपके साथ, और आपके खास पड़ाव में बातें तो होंगी ही, आप सभी के संदेश शामिल होंगे 1 से लेकर 2 बजे के बीच। तो 8657661071 8657661071

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सभापति ओम बिरला ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उच्चतम न्यायालय ने नीट प्रश्न पत्र लीक और अन्य परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करने के लिए सहमति जताते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान प्रदत्त है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 सदस्यों के पीठ ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपों से संबंधित कुछ पुलिस कर्मियों के परिजनों द्वारा दायर अलग याचिका पर भी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगी। पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब्दुल कलाम जी ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स अकाउंट पर कलाम को श्रद्धांजलि दी है। क्रिकेट में भारत ने कल हरारे में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। जिम्बाब्वे की टीम भारत द्वारा निर्धारित 193 रनों के लक्ष्य के जवाब में निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी है। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट और यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए। इसी के साथ समाचार समाप्त।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। ये सीधा सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव यानी कि 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर DRM पर भी सुन सकते हो।

साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप तो है ही, उस पे भी सुन सकते हो और 107.1। मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी आरजे मृण्मयी मनजा, सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और अब समाचारों के उस पार, वो घड़ी आ गई भाई, यानी कि म्यूजिक कैफे का शटर खोलने का समय हो चुका है। म्यूजिक कैफे अपनी ही कैफे है जहाँ म्यूजिक का साथ तो रहता है ही, ताकि हंसी हमारे चेहरे पे खिल ही सके।

हंसी सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी से श्रेया घोषाल की आवाज में, कुणाल वर्मा और अमी मिश्र, और उसके बाद देखते देखते बत्ती गुल और मीटर चालू। तो वही बात ऐसी ही है कि मीटर के साथ अपनी कहानी कभी अधूरी होती नहीं है, वो आ ही जाते हैं वसूली के लिए, है ना वसूली भाई की तरह। तो ऐसा है नुसरत फ़तेह अली खान और रोचक और मनोज के साथ, ये म्यूज़िक आपने तो सुना। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनोजा, और 12:12 हो रहे हैं म्यूज़िक कैफे में। म्यूज़िक के साथ बने हुए हो 107.1 म्यूज़िकली योर्स में। अब ऐसा है, ये फिल्म वैसे बहुत ही सही थी। जैसे कि हम देखते ही हैं, लड़के या मर्द जब दोस्त होते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी अभी एक लड़की जैसे कह रही थी, उसके भाई और उसका दोस्त, मतलब एक सेकंड पहले वो लोग ऐसे बात कर रहे होते कि शक्ल नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी दोबारा, और वहीं बोतल चढ़ा के भी आ जा रहे हैं, साथ में जाके चाय पियेंगे। बस एक पल में जानी दुश्मन और एक पल में यूं दोस्ती। इस फिल्म की कहानी में भी कुछ ऐसा ही था। जैसे शाहिद कपूर, उनका जो किरदार था, प्यार तो करते थे श्रद्धा कपूर से, लेकिन वो तो उनके दोस्त को चाहती थी। इतना ही खूबसूरत सा गाना, देखते देखते लोग बदल जाते हैं ऐसा लगता है कई बार, पर कभी कभी पहले से ही आस पास दिल किसके लिए धड़कता है वो भी नहीं समझ आता है ना, वैसी भी बातें हो जाती हैं।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: देखते ही देखते गाना हम सुन रहे थे और ये मैसेज भी आ गया है। प्रणव लिखते हैं, देखते ही देखते 12:14 का तो उनका मैसेज है, लेकिन अभी तो देखे 18 होने को चला है। आपकी खूबसूरत आवाज़ से और खूबसूरत गीतों से समय का पता ही नहीं चला। भाई हमारा प्रयास यही होता है एफएम रेनबो मुंबई में कि आपको वक्त का पता ही न चले। और एकदम खुशी के साथ म्यूज़िक कैफे में इसी तरह टेबल्स पर बैठे हुए हैं, एक तरफ मैं और एक तरफ आप, और दिल की बातें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह यहाँ बत्ती गुल नहीं होती हो वैसे हमारे म्यूजिक कैफे में। बत्ती है, मीटर भी चालू है वैसे दिल का। जो दिल की बातें होती है, अभी अभी सोच रहे थे ये जो फिल्म की कहानी है उसमें ठीक उसी तरह रज के रुलाया रज के हंसाया। बहुत कुछ कभी कभी जिंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंटेंस हो जाता है। हमें कभी कभी एक पल में लगता भी है कि जो हमारी जिंदगी में इस वक्त

उनके बिना तो हम शायद जी भी नहीं सकते। और उसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि जो बात इतनी ज़्यादा हावी थी आपके दिलो दिमाग पर, जहन पर, मतलब जो भी आप सोचो वही था, और वो चली जाती है वक्त के साथ। किस तरह हवाएं बदल जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो जब कभी भी बहुत ज़्यादा कुछ आपको उदास कर रहा हो तो ये भी याद रखना है कि एक सपने की तरह, कहीं ना कहीं बुरे सपने की तरह वो गुजर भी सकता है। हालांकि ये गाना तो बनता ही है इस वक्त, उसके बाद बातें यूं ही जारी रखेंगे, ऑर्डर तो टेबल पे आता ही रहेगा। सुन रहे हो अपना म्यूजिक कैफे अपनी मृन्मयी मनजा के साथ।

0: जब हैरी मेट सेजल तो क्या हुआ?
1: तो ये हुआ भाई, हवाएं गाना सुन रहे हो इस वक्त अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के लिरिक्स हैं, प्रीतम का म्यूजिक है और ये है
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज, म्यूजिकली योर्स।
0: तो ऐसा हाल है कि ठीक 12:30 पे वैसे मैं आपको प्रायोजित कार्यक्रम जो है सुनाऊंगी। हमेशा की तरह ये चल रहा है आजकल एनसीईआरटी उमंग, तो ये आप सुनेंगे 30 मिनट तक यानी कि 1 बजे तक, और उसके बाद समाचार और फिर हिट एंड हॉट। हमेशा की तरह मैं रहूंगी आपके साथ दोपहर 2 बजे तक। और मीटर चालू बिल्कुल नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि आपके टेबल पे कोई ऑर्डर नहीं आया हो तो आपको बिल आ जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। और दिल की बातें ऐसी ही होती हैं, किसी पे भी ज़्यादा निर्भर नहीं करना है। कहीं ना कहीं हर किसी की अपनी जर्नी होती है, अपना अलग सफ़र होता है, कभी ना कभी किसी को खुद बखुद ही समझ आता है। ऐसा भी हुआ है ज़िंदगी में पता है कि लोग 6-6 साल बाद या 2-3 साल बाद, 10 साल बाद भी किसी का अचानक से कोई माफ़ी वाला भी मैसेज, मतलब ऐसे हो सकता है। और दोस्तों में तो चले लड़ाई कैसी होती है आपको पता ही है, वो भी चलता रहता है। लड़कियों का लेकिन थोड़ा अलग होता है, जो वो गुस्सा हो जाती हैं कि जब हम इतने करीब हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो फिर ये धोखा कैसे हुआ, है ना? जैसे बिजली धोखा दे रही थी इस फिल्म में, वो श्रद्धा कपूर जैसे नहीं पहुंची थी कि आधे साइड कर्ल्स करके पहुंची हैं फंक्शन में और आधे बाल स्ट्रेट है क्योंकि बिजली चली गई। तो ज़िंदगी में भी ऐसे कई बार कई सारी चीज़ें चली जाती हैं, आती ही नहीं हैं। और लेट गो करना जितना मुश्किल होता है, कभी ना कभी सीखना भी पड़ता है कि अगर नहीं है, हवाएं चली गई तो बदलाव ये एक ही तो चीज़ है जो नहीं बदलती, है ना?

दोस्ताना का ये गाना सुन रहे हो म्यूजिक कैफे में 107.1 म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो मुंबई पर। विशाल डडलानी, श्रेया घोषाल, अमानत अली, फिल्म का नाम दोस्ताना। खबर कई बार कई चीजों की नहीं होती है, लेकिन फिलहाल आपको मैं ये खबर दे रही हूँ कि प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे एनसीईआरटी उमंग 27 जुलाई 2026 का 30 मिनट तक, और फिर मुलाकात होती है 1 बजे समाचारों के उस पार हिट एंड हॉट में। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनाजा। तो कहीं नहीं है जाना, हमारे साथ बने रहिए।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी,

0: और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी,
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पोध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
1: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
2: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
3: तुम से कह रहा हूँ,
2: देखिए, रखो, देखिए।
3: मुझे छोड़ दो, कहने भी अंगूठी ले लो।
1: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
4: नाथ,
5: महात्मा,
4: प्रभु,
5: महात्मा,
4: प्रभु,
6: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
5: वहाँ अंगुलीमाल है।
6: हाँ प्रभु,
5: वो बहुत बड़ा डाकू है।
7: हाँ, प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
5: जाए।
7: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
5: खतरा है। ना जाएं प्रभु,
6: ना जाएं प्रभु।
8: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: तोड़ लाए हो, फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया, वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी।

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत

0: आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है।
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय,

0: उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
2: जी, उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
3: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिंहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
3: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
3: फादर कामिल बुलके ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डीफिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
4: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
3: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
3: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: नमस्कार, ठीक 1:05 हो रहे हैं। मराठी समाचार के उस पार आ चुके हो हमारे पास हिट एंड हॉट पे। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनाजा। वो समय जिसका आपको था इंतजार, आप सभी के मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं 8657661071 पर 8657661071। और ये पहला गाना आ रहा है आपके पास

1:11 यानी सब कुछ सही होने वाला है। कभी कभी ऐसे अंक देख लेते हैं ना हम घड़ी में हमारी आंखों के सामने, तो सब सही लगता है। वैसे आजा माहिया यूं बुलाया कि क्या बोलेगी, ऑल द वे फ्रॉम असम हितेंद्र दास ने रिक्वेस्ट किया हुआ है ये गाने के लिए। फिजा फिल्म का आप सुन ही रहे हो, आकाशवाणी परिवार के लिए डेडिकेट कर रहे हैं सभी के लिए, और इनके दोस्त ऐसा लग रहा है पूरे देश के ही है, मीनल, रमेश, अमाल, विमल, और ये वाले बाहर के हैं क्या, मतलब बताइएगा जरूर। इंटरेस्टिंग सा नाम है, रेके वेलिक, नारायण, शिवा, दुर्गेश, विक्रम, स्वरजीत, भाई कौन, अविनाश, अंकित महाराज, प्रेमजीत, हारामोनी, देवाशीष, अंजलि, जयंत, सुमन, सुमित, सुधांशु, मानस, माधव और शेफाली, मतलब सभी मिलके सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो हमारा साथ दे रहे हैं हमारे इंजीनियर्स हमारे कंट्रोल रूम के, वहां से ये रिक्वेस्ट है।

न जाने कहां से ये हवा आ रही है, न जाने कहां से ये फिजा आ रही है। क्या बात है। तो ऐसा है कि इतने सारे अभी मैसेजेस हैं कि मैं ये सोच रही हूँ नन्ही सी जान। हाँ, लेकिन प्रयास मेरा पूरा रहेगा। सबसे पहले 11:01 वाले मैसेज थोड़े से वो ऊपर नीचे हो गए हैं, आपने दोबारा से भेजा रहेगा, तो हम 11:05 पे चलते हैं। नमस्ते मृन्मयी जी, आपको शो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये धनंजय ने लिखा हुआ है नवी मुंबई से। उन्हें उसके बाद महेश पे चलते हैं, ये लिखते हैं अजमेर राजस्थान से, आदरणीय आरजे मृन्मयी। अरे आपने तो पूरा चिट्ठी लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोरा जी लिखते हैं, हार्टी वेलकम टू द प्रोग्राम ब्रेक फ्री, बहुत ही अच्छा।

जो प्रेजेंटेशन है और आपको गाने भी बड़े पसंद आ रहे हैं। माधव लिखते हैं हमें आपा, आपा है कि अप्पा है, क्योंकि मतलब आपकी भाषा में आप जैसे बोलते हो, ये वैसे हमें लिख रहे हैं कल्याण से और ये सलाह चाहते हैं। तो ये भी तो लिखो ना मेरी जान कि किस बात पे सलाह चाहिए आपको, ज़रूर देंगे दिल से। और क्या ख्याल है, ख्याल तो अच्छा है। तो मौसम सुहाना है इस वक्त दादर का, 11:08 से हमारे साथ बने हुए हैं बाबा दादर से। और इसी के साथ दिलेश है, रवीन ने हमें मैसेज किया हुआ है, दत्ता केदार पंडरपुर से लिखते हैं, बिल्कुल सही बात। सही बातें कर रही हैं आप, ओह ये बड़ा प्यारा सा मैसेज है। सही मतलब कभी भी हम लोग बात कर रहे होते हैं और फिर आपकी जो टिप्पणियां साथ साथ आ रही होती है ना, तो हम पढ़ते रहते हैं, हमें भी बड़ा मजा आता है। और फिर दत्तात्रेय जैसे उनके गुस्से के बारे में लिख रहे होते हैं बीलापुर से, सुरेश वैष्णव हमारे साथ है। और गानों की जो रिक्वेस्टें हैं वो भी बहुत सारी हैं, तो अगला लेके आ रही हूँ आपको ये गाना लैला लैला अंधाधुन से।

अमरावती से पंकज मोहड़ ने बोला है कि मैंने तो इतने महीने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी, तो जाहिर सी बात है ये गाना आ रहा है।

अंधाधुन बेचारा दिल आज से थोड़ी ही देर में ठीक 1:30 पे वैसे सुनोगे समाचार। जय जगन्नाथ आपको भी राजेंद्र, शुभ दोपहरिया आपको भी। बस इसी तरह हम से बातें करते रहें 865-6-6-1-0-7-1 पर। सुबह लक्ष्मी भी हमारे साथ सुबह से हैं और फिरोज बिल्कुल मैं देख रही हूँ पूरा व्हाट्सएप लवर्स ग्रुप आपका जो है आप भी हैं, सभी लोग हैं भाई। ऐसा किसने बोल दिया कि 11 बजे से कुछ लोग नहीं आए? सुबह लक्ष्मी वैसे सुनना चाहती हैं, गली में आज चांद निकला, सबकी फरमाइश हो ना हो लेकिन सबका नाम जो है कहीं ना कहीं, कोशिश करूंगी राम बिल्कुल, और प्रजापति जो है ये वसई से सत्य का गाना सुनना चाहते हैं, सपने में मिलती है, और फिर उसी के साथ साथ अमित बिल्कुल बिल्कुल कुदरत में ये खोए हुए हैं इस वक्त, सुबदा बेमिसाल का गाना सुनना चाहती हैं, और प्रमोद साथ है हमारे हिट एंड हॉट को बिल्कुल सुन रहे हैं, और राकेश माथुर जो हैं ये पुणे से लिखते हैं हमें आरजे मृन्मयी जी हिट एंड हॉट में, इनमें से कोई भी तो इन्होंने चॉइसेस हमको दी हुई है। इंदौर से

ये साखरे हैं, उन्हें गाने बड़े पसंद आ रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का पीलू तेरे ये वाला गाना सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ नंदूरा गोपाल हैं सपकाल, ये श्रीमान आशिकी ये गाना सुनना चाहते हैं। बोल उन्होंने लिख के भेजा, ये थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा, लेकिन ये अगला वाला गाना आ रहा है आपके पास।

आज बिल्कुल हम लोग बात कर ही रहे थे सियाह रात की और किरण धूप की, क्या बात है मोहड़। आपकी चॉइस भी बहुत सही है। विजेंद्र भी लिख रहे हैं कि सभी की चॉइसेस बहुत पसंद आ रही हैं।

कसम से तो कमाल है ही है। अभी ठीक है 1:30 पे सुनोगे समाचार और मैं ये सोच रही हूँ मैंने जिंदगी में इतने सारे नाम नहीं लिए होंगे, कोशिश कर रही हूँ फिर भी। स्वर्ण है, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अरेवाज, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गांव का नाम है लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। देश के इतने गांव में जानती हूँ ना आप लोगों के मैसेजेस से, वो भी अलग ही बात होती है। ये कालका से भेज रहे हैं हमें शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज,

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, स्वागत है आपका मराठी समाचारों के उस पार। वापस आ चुके हो हिट एंड हॉट में, और खास तौर पे सभी के नाम इंतजार कर रहे हैं। अभी तो समाचारों में भी जिस प्रकार हम लोग उड़ीसा और असम की बात कर रहे थे, असम से भी इतने सारे लोगों ने वैसे मैसेज किया हुआ है, तो आपके हालात क्या हैं वो भी लिख दे। और यहाँ मुंबई में भी, जैसे कल्याण से सुहास ने हमें कॉल किया था और वो कह रहे थे कि एकदम घर में गिरफ्तार, हाउस अरेस्ट वाला हाल है कि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकते, पानी है। तो आप भी अगर वहाँ से हैं तो आपका क्या हाल है ये भी बताओ, क्योंकि कई बार ना कभी, जैसे यहाँ पे तो ऐसा था कि सुबह सुबह बारिश के बाद धूप खिलती है तो नज़ारा अलग ही होता है ना। वो और वहीं के साथ साथ पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती, थॉमस, ये सभी हैं जो न्यूज़ ऑन AIR ऐप है, इसके ज़रिए आप सभी हमें सुन सकते हैं। तो आपको पता ही है कि देश के कोने कोने से सुनते रहते हैं। नूतन सुनना चाहती हैं जादू तेरी नज़र डर से, अशोक ठाकुर जो है अभिलाषा, इन्होंने भी गाने के बोल लिखे हैं, तो ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लोफर से ये गाना सुनना चाहते हैं संदीप कुमार, आज मौसम बेमान है। और वहीं संजय दर्शन जो हैं वो भी हमारे साथ, गाने मेरे गाने कितने बजे आज, देखो विजेंद्र भी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ लिखे जा रहे इतना सारा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना बदमाशी जो है। यश की रिक्वेस्ट है ये, वैसे प्यार हमको होने लगा है, चित्रा जी का जन्मदिन है 27 जुलाई है, तो ये गाना हाजिर हो रहा है आपके पास।

0: खोना था दिल खोने लगा। 1:45 बिल्कुल। ये मैसेज दर्शन जो लिखते हैं MM मेरे नाम के इनिशियल्स हैं, शुक्रिया। वैसे भी नाम ऐसा है कि कभी कभी इनिशियल्स पे इंसान पहुंच ही जाता है। नहीं
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
0: तो मैंने जो कैसे हो पूछा था, तो हाल समाचार भी आपने भेजा है। आपका जो कंडीशन होती है वो भी आप शेयर करते हो, बांटते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे गाने बज रहे हैं कि मेरे गाने तो उसी में बज जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा सा संदेश है भाई। और साथ ही साथ मैं लकी बनूंगा क्या, ये जो आप पूछ रहे हैं पुणे से मैसेज है, तो यंगस्तान का ये गाना आ रहा है,

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: तो राकेश माथुर की ये रिक्वेस्ट थी पुणे से, और पुणे से और भी काफी लोग हमारे साथ हैं, सुदाहरण जैसे शिवाजी और भगवान, नाम भी मतलब क्या कमाल के हैं आपके लिखते हैं कि गाने बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, तो सारे सुन ही रहे हैं हम लोग मिलकर। और बैंक का नाम भी उन्होंने बकायदा लिख के भेजा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उस बैंक से कितने रुपए लोग कोई कोई गांव के नाम लिखते हैं, कोई कोई अपने शहर के। ये जनाब ओहो अपने बैंक का नाम लिख के भेज रहे हैं। वही एरोली से नितिन स्वामी, मृन्मयी आपकी ऊर्जा भारी, हमेशा हंसकर दिल से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। और वहीं ये है गायकवाड़ भाऊ, आज इतने सारे नाम है, और ये उन्होंने उनके साथ है, सुनील है, सुषमा, अनन्या और राजवीर पुणे से ही है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है वहाँ और आज भी चालू है, मौसम बहुत बढ़िया सा हो गया है बहाने, हमें 3 महीने से जो है ये सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सभी के मैसेजेस, पंडरपुर से भी ये आपका मैसेज आया है, केदार, अलग अलग जगहों से जो आप जुड़े हैं हमारे साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप के ज़रिए, बस किसी का नाम रह ना जाए। हाँ हाँ अंजू, पता है मुझे अंधेरी इससे आप एकदम सुबह से है, बिल्कुल। तो गानों का सिलसिला जो है यूं ही चलता रहेगा, दिल चाहता है वाले कहाँ गए, हाँ उनका भी है लगाया हुआ कृष्णा, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना वैसे सरनेम कैसे बोलते हैं? ये आ रहा है शोले का गाना, अमजद खान की याद में, आज उनकी पुण्यतिथि है तो उसी बेसिस पे सुनना चाहते, बहुत सारे फैंस ने रिक्वेस्ट किया, ये आ रहा है।

0: आप भी समझ चुके हैं और मैं भी कि क्या होने वाला है।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
0: यहाँ आपस में खींचा तानी भी इतनी हो रही है कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो हर बार ही रिक्वेस्ट करते हैं। यही आप लोगों की आपस की मस्ती भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो विजेंद्र ऐसे ना सोचे कि दूसरे नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल कान लगा के ध्यान से सुन रहे होते हैं। ये है हमारे साथ लाल, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी जो है ये हमें भेज रहे हैं ढेर सारा जो है हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ गुरमीत सिंह है, विश्वनाथ छत्रे, कहीं कोई छूट ना जाए मेरी जान। ये समा ऐसा है ना, आप सभी के मैसेजेस हम लोग शामिल करते हैं, दिल से लिखी हुई आपकी सारी बातें। मुकेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्म, मोहिनी और बलवीर तो हैं ही, प्यारे लाडले टुकटुक भी हैं। और उसी के साथ साथ आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, ढेर सारे मैसेजेस प्रजापति जी और ये हैं जॉन डिकोस्टा और रोजी उनके साथ, पर्ल एंड विलिस डिकोस्टा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इतना सारा प्यार। और प्रमोद बाय द वे बहुत सारे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि एक ही प्रमोद हैं। चेतन हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं और फिलहाल ये गाना आ रहा है, थोड़ा सा गर्ल पावर, लड़कियों की फरमाइश भी आनी चाहिए ना। सुदर्शन, प्रखर, नीति और मंगलाबेन, नमस्कार। तो कुमार आपको भी पसंद आया, चले इसी के साथ मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। गली में चांद निकला और चांद कभी कभी दोपहर को चला भी जाता है, यानी कि मेरे जाने का समय हो चुका है। सुनते रहो 107.1 FM रेनबो मुंबई।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए।

0: मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
3: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
5: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
6: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
7: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, मैं भी इधर चला और उधर चला, फिर सीधा आया एफएम रेनबो आपके लिए। क्योंकि दिन भर चाहे आप भी इधर से उधर और उधर से इधर घूमते रहे हो, लेकिन शाम को सही मंजिल है हम सबका, एफएम रेनबो 107.1। तो स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे रॉबिन। और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेगमेंट, जिसका नाम है लव यू जिंदगी। और आज हम बात करेंगे प्यार की। प्यार जो सिर्फ किसी हम सफर से नहीं होता, प्यार वो भी है जो हम अपने माता पिता से करते हैं। प्यार वो भी है जो दोस्तों के साथ बिताए गए एक खूबसूरत पल में छुपा होता है। और प्यार वो भी है जो हमें खुद से करना चाहिए। तो आज की शाम प्यार के हर उस रंग के नाम जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, चाहे वो हम सफर का प्यार हो, माता पिता से प्यार हो, दोस्तों की दोस्ती का प्यार हो, या फिर खुद से किया गया प्यार हो। क्योंकि सच तो यह है, प्यार जिंदगी में सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की एक खूबसूरत वजह है।

दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मंगेश जोशी जी सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो शुक्रिया आपका। उसके बाद विजन घटोल जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं। सर गुड इवनिंग आपको भी। प्रणव शिंदे जी भी, उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम, और आपको भी नमस्कार मेरा भी। राजेंद्र परमार जी भी नमस्कार बोल रहे हैं, और पंकज महोड़ जी भी नमस्कार बोल रहे हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार की बात हो और माता पिता के प्यार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में शायद सबसे निस्वार्थ प्यार हमें अपने माता पिता से मिलता है। हम बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन माता पिता, उनके लिए हम हमेशा वही बच्चे रहते हैं। हमारी छोटी सी परेशानी उन्हें परेशान कर देती है, हमारी छोटी सी खुशी उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कई बार हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनकी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ एहसास होता है कि उनकी डांट के पीछे भी प्यार था, और उनकी खामोशी में भी चिंता।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्ती की। दोस्ती प्यार का शायद सबसे खूबसूरत और बेफिक्र रूप है। दोस्त वो होते हैं जिनके सामने हमें अच्छा दिखने की कोशिश करनी नहीं पड़ती, जिनके साथ हम अपनी सबसे बड़ी खुशी भी शेयर कर सकते हैं और अपनी सबसे बड़ी परेशानी भी। दोस्ती में प्यार होता है, भरोसा होता है और वो पागलपन होता है जो जिंदगी को थोड़ा और रंगीन बनाता है।

दोस्तों, हमने अभी तक बात किया है माता पिता के प्यार को, दोस्ती के प्यार को, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्यार होता है वो होता है सेल्फ लव। हम दूसरों से प्यार करना तो सीख जाते हैं, लेकिन कई बार खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते, दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और कई बार ये भूल जाते हैं कि हम भी प्यार के हकदार हैं, खुशी के हकदार हैं और अपने सपनों को पूरा करने के हकदार हैं। खुद से प्यार करना मतलबी होना नहीं है, खुद को अपनाना, अपनी कमियों को समझना, अपनी छोटी छोटी जीतों पर खुश होना, यह सब भी प्यार ही है। क्योंकि हम सब में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, दुनिया आपको चाहे जितना जज करे, आप खुद को कभी कम मत

दोस्तों अब समय हो रहा है लव जिंदगी को समाप्त करने का। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, जहां प्यार है वहां उम्मीद है, और जहां उम्मीद है वहां जिंदगी है। हम आपसे मिलेंगे दोबारा ठीक 6:05 पर। आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम अंदाज़े बयां।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: कुछ अल्फाज जो कहे नहीं जाते बस महसूस किए जाते हैं, कुछ धुने जो कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं, और कुछ एहसास जिन्हें बयां करने के लिए लफ्ज भी कम पड़ जाते हैं। मगर जब अल्फाज सुरों से मिलते हैं तो एक कहानी जन्म लेती है। तो आइए शब्दों, सुरों और एहसासों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां FM रेनबो 107.1 पर। तैयार हो जाइए क्योंकि आज की महफिल में हर एहसास का अपना एक अंदाज होगा और हर अंदाज का अपना एक बयां।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन। कभी कभी प्यार किसी बड़े इजहार के साथ हमारी जिंदगी में नहीं आता, बस किसी की एक मुस्कुराहट अच्छी लगने लगती है, उसकी बातें बार बार याद आने लगती हैं और उसकी मौजूदगी हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। फिर एक दिन दिल चुपके से पूछता है, क्या यही वो एहसास है जिसे प्यार कहते हैं? जब दिल किसी के लिए धड़कने लगे तो एहसास खुद ब खुद कह देता है, यही होता है प्यार।

दोस्तों अंदाज़े बयां सुन रहे हैं आप एफएम रेनबो 107.1 पर। कभी कभी किसी का चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं होता, उसमें हमारी पूरी दुनिया बस जाती है। उसकी एक झलक दिल को सुकून दे जाती है और उसकी याद खामोशी में भी एक खूबसूरत सा शोर पैदा करती है। तो इसी खूबसूरत एहसास और एक बेहद हसीन चेहरे की याद के साथ सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, कभी कभी आंखें वो कह जाती हैं जिसे कहने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं। किसी की आंखों में छुपी मासूमियत, प्यार और अनकही सी कहानी दिल को बस यूं ही छू जाती है। और शायद इसी एहसास को सबसे खूबसूरती से बयां करता है यह गीत, जब किसी की आंखों में देखकर दिल को कुछ खास महसूस हो।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 और अब शुरू होने वाला है आपका चहेता कार्यक्रम, जिसका नाम है हम तुम। दोस्तों, आज की हमारी थीम, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसी गाने आपको फरमाइशें भेजनी हैं जिनमें ये चीज़ें शामिल हो, यानी कि साड़ी, दुपट्टा, घूंघट, बिंदिया, चूड़ी, घर, गाड़ी, झुमका। बहुत सारे गाने की रिक्वेस्ट हमें आई है, तो एक एक करके उनको प्ले करते हैं। सबसे पहले जो गाना हम प्ले करने वाले हैं, इसकी रिक्वेस्ट आई है देव मोहन मालविया जी की, और ये है बनारस से। तो चलिए सुनते हैं, और इन्होंने जो चूज़ किया है चीज़, वो है चूड़ी।

जी हाँ, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। और इस गाने की जो चॉइस थी वो बहुत लोगों ने की थी, प्रमोद चिंचोलकर जी, रजनीकांत पाटिल, पंकज महोड़, फिरोज सिगनपुरिया, और वो डेडिकेट कर रहे हैं म्यूजिक लवर्स को। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। और अब अगला गाना जो प्ले करने वाले हैं वो है साड़ी का फॉल, विजेंद्र घटोल अकोला से।

दोस्तों, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं या हमारी थीम को। ये थीम ही ऐसा है कि बहुत सारे गाने हैं इस पे बेस्ड और बहुत लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं। तो जो अगला गाना जो प्ले होने वाला है वो दुपट्टा तेरा, इसकी रिक्वेस्ट की है चेतन कुमार गया बिहार से, हितेंद्र दास असम से और दत्ता केदार।

इस गाने की फरमाइश की थी मोहित जी ने, जो है अंधेरी से। और अगला गाना जो हम प्ले करने वाले हैं वो है गाड़ी बुला रही है, और इसकी फरमाइश की है सुमित प्रकाश जी ने।

दोस्तों बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि सब का गाना प्ले किया जाए, क्योंकि इतने सारे गाने हैं इस पे, इस थीम पे। तो अगला गाना जो हम प्ले करने जा रहे हैं, वो फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम और बोल है बंगला गाड़ी झुमका कंगना। मतलब इसमें सब कुछ, जो भी हमारी चीज़ें हैं इसमें सब आ चुकी हैं। तो ये गाना तो प्ले करना बनता है, और इसकी रिक्वेस्ट की है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी ने। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
3: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
2: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक

0: विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य

महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर यह पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है।

सरकार को एसआईटी में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमेरिकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम डेविड को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं कि वो हमेशा मिल जाए, बल्कि ये है कि वो इंसान को बदल देती है। कभी उसे सब्र सिखा देती है उसे, कभी इंतज़ार और कभी ये एहसास भी करा देती है चाहत के अंजाम एक जैसा नहीं होता। फिर दिल हार मां नहीं मानता, है ना, नहीं मानता, हार कभी भी नहीं मानता। वो हर बार नए हौसले के साथ धड़कता है, शायद इसीलिए कि गजल का रिश्ता मोहब्बत से इतना पुराना है कि दोनों में उम्मीद, तकलीफ और वफा एक जैसी है।

शफक कहते हैं किरणों को, रेज और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है, शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली

मोहब्बत को अक्सर लोग सिर्फ एक एहसास समझते हैं, लेकिन अदब की दुनिया बताती है कि इश्क सिर्फ दिल का मामला नहीं है, नजरिए का भी नाम है। जिस दिल में सच्चा शौक जागता है, उसके लिए हर मंजिल एक नई तलाश बन जाती है। शायद इसीलिए बड़े शायरों ने मोहब्बतों को कभी आसान सफर नहीं कहा। मिर्ज़ा ग़ालिब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर बार पढ़ने पर या सुनने पर उसका एक नया पहलू सामने आता है। उनके अल्फाज सिर्फ अपने दौर की बात नहीं करते, बल्कि हर उस इंसान की बात करते हैं जो उनके लिए कहानी बन जाता है, जिसने कभी चाहत, बेचैनी, इंतजार या अपनी तलाश का सफर तय किया हो। रंगे महफिल आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ताहिर, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। आगे बढ़ते हैं। आजमाइश सिर्फ मोहब्बत की नहीं, कभी अपने हौसले की भी होती है। वक्त कभी इतने सवाल पूछता है कि इंसान के पास जवाब कम पड़ जाते हैं, मगर जो लोग हर मुश्किल से के बाद भी अपनी फितरत नहीं बदलते, वो असल में मजबूत होते हैं। गजल भी हमें यही सिखाती है, दर्द को छुपाना नहीं, उसे अल्फाजों की रोशनी देना है।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक। रंगे महफिल प्रोग्राम चल रहा है। सबसे गहरा दर्द अक्सर वो होता है जिसका वो शोर नहीं होता, ना आंसू दिखते हैं ना शिकायत सुनाई देती है, बस इंसान पहले से थोड़ा कम बोलने लगता है और थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है। मगर वक्त ये एक अच्छी बात होती है, वो जख्म भरना जानता है, बस जल्दी नहीं करता। इसलिए हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। इसी बात पे हमें यकीन रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबो, बस ये वो टाइम होता है जो थोड़ा सा दिल को अजीब महसूस होता है, क्योंकि हमें कहना होता है कि हम जा रहे हैं इसी वादे के साथ कि बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक ख्याल रखिए अपना, खास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।

मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई। नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्य विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए एक कार्य बल के गठन की घोषणा की। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट आई। नाइजीरिया के कजुना राज्य में बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्य विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारत में मुक्केबाज सचिन सिवाच, अंकुश और साक्षी चौधरी आज ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं को 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार, शुभ रात्रि। आप जुड़े हैं हमारे रात्रिकालीन प्रसारणों में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और प्रोग्राम जो इस वक्त आपके साथ तारुफ का इंतजार कर रहा है वो है सुहानी रात। और सुहानी रात के इस पल में, इस खूबसूरत पल कहना चाहिए, जब हल्की हल्की बदली है आसमानों पर, इस स्याह अंधेरी रात में चांद भी कहीं बादलों से झांकता हो मिलता हो, तो हम क्यों ना यादों के झरोखों से झांकें। थोड़ा सा वक्त मिलता है, ये 3-4-5 घंटे, जब हम अतीत की गहराइयों में जाने की फुर्सत निकाल पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, कुछ याद कर पाते हैं और कुछ अलग

दिन के लिए भी एक तैयारी का जो हमारा कहना चाहिए कि जो स्पेस है वो हम कहीं ना कहीं इसमें से इंतज़ाम कर पाते हैं। रात के पलों को सिर्फ सोना ही, खैर नींद अगर आ रही है तो सोना ही प्राथमिकता होनी चाहिए रात में, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन आप अगर कहीं यादों में खोए हैं और उस वक्त कहीं फिर आप इस आसमान और बादल और चांद वाले फेर में भी फंसे हैं या इसको एक संजीदगी के साथ देख रहे हैं, तो फिर फौरन जुड़ जाइए हमारे साथ, ठान लीजिए हमारा हाथ, क्योंकि अब है सुहानी रात मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम हैं जुड़े आपके साथ। तो आपका स्वागत तहे दिल, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं पूरी रात के लिए। लेकिन अगर सफर में हमारे साथ चल पड़े हैं तो जुड़े रहिए है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती। सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं

आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी

0: होशना का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: हम आकाशवाणी रेनबोज 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आपसे हम होता मुखातिब, और फिलहाल अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुहानी रात मेरे यानी रजत के साथ। अब वक्त हो चला है अब तक के मुख्य समाचारों का। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आज रात नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से मुलाकात की। श्री बर्नहम के एक सप्ताह पहले पदभार संभालने के बाद यूक्रेन की यात्रा करने वाले वे पहले विदेशी नेता हैं। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच, अंकुश और साक्षी चौधरी आज ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। और भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप जुड़े हमारे साथ, कुछ ही देर में हाजिर होगा प्रोग्राम भुलाए ना बने आरती शर्मा के साथ। जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो 102.6 और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी।

समंदर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जिन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी।

मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई निट मुद्दे पर। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच, अंकुश और साक्षी चौधरी ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और भारतोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: 3:13 आकाशवाणी रेनबो ट्यून किया हुआ आपने 102.6 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम हैं आपके साथ उपलब्ध। और बस चलता जा रहा है ये सफर, और एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी है अभी 3 बजे से, और ये सफर कहलाता है क्या आप समझते भी होंगे, वैसे मैं बता भी दूं, मिडनाइट मेलोडीज आपका चहेता प्रोग्राम एक बार फिर से हाजिर, जिसमें कि प्रोग्राम शुरू होते होते इतने मैसेजेस हमें मिल चुके हैं व्हाट्सएप पे, यानी इस वक्त भी लोग हमसे जुड़े हैं, सुन रहे हैं, तो आपके जज्बे और जज्बात दोनों को सलाम। और इसी तरह आपकी मोहब्बत, आपकी ये जो फराख दिली है हमारे लिए है, और ये मोहब्बत और ये जो स्नेह हमारे लिए है ये हमेशा बना रहे, ये ज़रूर हम चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि इस मोहब्बत का एक इंच भी कम ना होने पाए। आप जुड़े हमारे साथ मिडनाइट मेलोडीज में मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। खूबसूरत गानों का एक और कारवां हमारे साथ, आपके साथ और मेरे साथ बस शुरू हो चुका है।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए

0: जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

रहे हैं हम समाप्ति इस कार्यक्रम की, जिसे आपने सुना मिडनाइट मेलोडीज के नाम से। मैं रजत, आप जुड़े हैं इस समय हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुबह के ठीक 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विदेश विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में आयोजित महिला शॉटपुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर इस घंटे के मुख्य समाचार। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं आकाशवाणी रेनबो पर ही लेकर अगला कार्यक्रम सारेगामा, और आपके साथ होंगी आरती।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: भूल कोई
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कभी हमने

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।